कारण विष्णु बारन मोहब्बत पारण जात कारण विष्णु बारन मोहब्बत पारण जात जय जय जग कारण।

मंझ आप ते डिग पे पर पांड नहीं सके। गुरु अर्जन देव पातशाह ने पहला लकड़ा नु बाहर कटे फिर रस्से नाल पाई मंझ नु जदों बाहर कटिया ते गलवकड़ी विच लै लिया। इतना घुट के प्यार कीता इतना प्यार कीता ते गुरु पातशाह ने फिर वार भी दे दिता मंझ गुरु का गुरमंझ प्यारा।

तुम्हारे देखे ये तेरा है तन मन तन ए मेरे वाहिगुरु कृपा कर कोई तेरे दर्शना दी झलक इस हिरदे विच पै जाए।

सिंह कहन लगी बीबी कोई जरूरी काम है। कहन लगी हां। एक सिंह कहन लगा तू इथे खड़ी हो मैं पूछ के आ गया। थोड़ी देर बाद पहरेदार सिंह वापस आया कहन लगा बानो तंबू अंदर चली जा। हरि सिंह नलवा

अगर मेरा कोई कुत्तो रोवे तो बिल्कुल हरी सिंह नलवे वर्गा होवे। सिंह साहब ने फिर कहा, बानो शकलां विच की है, पुत्र किसे भी धर्म का होवे, किसे भी मजहब का, उहदी कहो जी भी शकल होवे, नेक होना चाहिए। बानो कहन लगी, नहीं तुहाडे वर्गा पुत्र चाहिए, तुसी मेरे नाल निकाह करा लो, व्याह करा लो। उस वेले हरी सिंह जी उठ के खड़े हो गए, गुस्से नाल अखां लाल हो गई, कहन लगे, बानो जा चली जा, तू मैनू डेगण आई है, साडे गुरु दा हुक्म है, एका नारी जती होए पर नारी ती भैण बखानी। जद ए गल कही बानो वापस मुड़ी, पर वापस मुड़दी ने एक ता ना मारे। कहन लगी, हरी सिंह मैं सुने है कि गुरु दे घरों कोई खाली कदी नहीं मुड़े, ये भी सुने है कि सिख दे घरों भी कदी कोई खाली नहीं मुड़िया, अज ये गल झूठ हो गई है, मैं सिख दे घरों खाली मुड़ चली। ताना मारे है। हरी सिंह कहन लगे, बानो ठहर जा, गुरु दा घर उथों ते कदी कोई खाली नहीं गया, गुरु दा जिहड़ा सिख है उहदे घरों भी कदी कोई खाली नहीं गया। पहरेदार सिंह नूं आवाज मारी, पहरेदार अंदर आया, हरी सिंह जी कहन लगे, जा सिखा, दूसरे तंबू विचों

गुरु की संगत आप आत्मरस कीर्तन दा महा आनंद प्राप्त कर रहे हो। ऐस वेले सत्कारयोग संत अनूप सिंह जी ऊना साहब वाले आप जी नूं कीर्तन सरवण करा रहे हन। आप लिए लड़ लाए दर दरवेश से, तिन तन जने दी माओ आए सफल से। आओ आनंद मानिए कीर्तन।

फिर वचन सुनाया पवाईशर सिंह कहंदे एक बारी बाबा जी एक गुरुद्वारे वाल उंगल करके कहन लगे किन्ना सोहना बनिया है। बाबा ईशर सिंह जी कहंदे मैं अगों कहता हां जी बिल्कुल ठीक बिल्कुल ठीक। कहंदे ये हुण असीं बोल नहीं सकदे, उन्होंने आख्या बाबा ईशर सिंह जी कहंदे सानू ताड़ करके चपेड़ पई।